0: हाँ आशीर्वाद हाँ कुर्दे कुर्दे बहुत आशीर्वाद हाँ।
1: इस दौरान दूजे दोस्त ने अपना समा गुरु जी दी अते उना दे संत रूपी भगतां दी संगत विच बिताया सी। हे गुरु जी, मैं तुहाडे तो कुर्बान जांदा हां, कृपा करके पेंटा स्वीकार करो, इस दी वरतों गरीबां दी सेवा लई करो। हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजर हां, कृपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा दियो। हर रोज उदोवें कम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल उना दे वचन सुनन,
2: वाहे गुरु,
1: शब्द गाउन,
2: वाहे गुरु, वाहे गुरु,
1: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउण लई चला जांदा अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा। उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नू झूठ बोलिया अते उना दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उना दा पैसा जुआ खेडन, उस औरत नाल शराब अते सिगरेट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उना नीवे लोका नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। एक कई दिना तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
0: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बितौना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नू झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमां विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, ता फिर की फर्क पैंदा है कि असी चंगा करिए जां माड़ा, अपनी जिंदगी तां उवें है जिवें पहला सी।
1: दूजे दोस्त ने कहा,
2: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए, मैनू विश्वास है कि आपा नू सही उत्तर मिलेगा। कल नू मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है आपा एथे ही मिलदे हां, आपा इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपा नू जवाब अपने आप मिल जाएगा।
0: इंज ही करदे हां, मैं देखण लई उत्सुक हां कि की होण वाला है।
2: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपां कल ही मिलांगे।
1: अगले दिन ओ गुरु जी कोल गया अते संगत दी निग्गी गोद विच बैह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
0: कि तू इत्थे है दोस्त? नहीं,
1: उन्हें इंतजार कीता,
0: ला ला ला ला।
1: होर इंतजार कीता, अते जदों ओ इंतजार कर कर के अक गया तो उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचनियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनू सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
0: सोना?
1: उसने होर खोदिया, ओनू कुजा मिलिया। उसने सोचिया,
0: अज मेरा दिन चंगा है, हो सकदा है इत्थे होर भी सोना होवे।
1: पर उस कुजे दे अंदर सिर्फ कौड़ा सी।
0: कौड़ा? ओहो, ये ता बड़ा निराशाजनक है, पर शुक्र है मैनू एक सोने दा टुकड़ा ता मिलिया, चलो यही सही है।
1: फिर थोड़ा समा इंतजार करन तो बाद दूजा दोस्त गुरु जी दी संकट तो वापस आया।
2: ओह,
1: ओ लंगड़ा रहा सी।
2: आए मेरा पैर।
0: की हो गया तैनू?
2: मैं गुरु जी दी संगत तो होके वापस पैदल चल के आ रहा सी अते मैं तिलक गया अते मेरा पैर एक वड्डे कंडेदार झाड़ी ते पै गया। ओ मेरे पैर दे विच डूंगा खुब गई, माड़ी किस्मत आ मेरी। ओए,
1: ओह दोवें ही बड़ी उलझन विच सन।
0: ऐस गाल दी कोई समझ नहीं लग रही। असी उस ईश्वर तो पुछया कि साडे चंगे जां माड़े कर्मां नाल कोई फर्क पैंदा है अते कि ए ओदा जवाब है, मैं बुरा कीता मैनू सोना मिलिया, जद कि तू चंगा कीता अते तैनू सट वज गई।
2: मैनू विश्वास है कि ईश्वर ने सही जवाब ही दिता होवेगा।
0: मैनू ए जवाब बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इसदा की मतलब होया?
2: मैं भी मंदा हां कि मैनू भी इस दी समझ नहीं लगी। आपां नू गुरु जी कोल जाना चाहिदा है, ओ सानू इनू समझाण विच मदद करनगे।
1: अगले दिन ओह दोवें गुरु नानक देव जी कोल गए।
2: गुरु जी, मैं हर रोज तुहाडे कोल आउंदा हां अते मेरा दोस्त भी हर रोज अपने परिवार नूं एही दसदा है कि ओह तुहाडे कोल आउंदा है।

0: ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया हो रही वीडियो सब्सक्राइब करो।
1: You are listening to SeekNet Radio.
2: SeekNet presents stories for children.
3: The best musician in the empire.

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया हो रही वीडियो सब्सक्राइब करो।

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।